तेर तो ती पखाई हथ जगत कसाई नील बसिर पैरो बे प्रवाण मलेश ताले पुठे प्राण पाख्या का कुठा बकरा खाना चौंके पर किसे ना जाना देखे चौंका गड्डी कार ऊपर बैठे कुड़ियार मत पिटे मत पिटे दे मत पिटे।

अड़सठ तीर्थ जे नित नहीं मैल जिन पटन दरबार कुदरते भले संसार तिन हो लगा रब सेती देखने विचार रंग हसे रंग रूबे चुप पी कर जाहे प्रवाह नहीं किसे के रिवास च नाह दरबार टुपर खर्च मंगा जब देता।

और जिसे भी है सुख पाइये सो साहिब सदा संभाल लिये। जित किता पाइये अपना सकाल बुरी कंका लिये। मंदा मूला किचे दे लम्मी नदर निहाली। जो साहिब नाल हारी ते वेखा पासा ढालिया।

कबीर फल लागे फलन पाकन लागे आंब जाए पहुँचे खसम का जाओ बीच न खाही कांब। कबीर सब ते हम बुरे हम तज भलो सब कोई

विशुमारो अथाह अगणतो अतुल ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले जुगो जुग अटल दीन दुनी दे मालक सर्वरे कायनात दे सांझ रहवर गुरुआं के गुरु पीरां दे पीर धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सचे पातशाह जी तिन्हां दी पावन और मुबारक हजूरी अंदर गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब पावन स्थाना उपर जुड़मिल बैठे गुरु प्यारेओ सतगुरु जी ने अपार बख्शिश कृपा वरताई है। अपने पावन चरना कमलां पास जुड़ के बैठण दा सुभाग सतगुरु गुरु बाबा जी ने बख्शिश कीता है। आओ गुरु प्यार वालेओ जो धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की पावन बाणी दियां लड़ीवार विचारां चल रही ने उन्हां चल रही लड़ीवार गुरबाणी विचारां दे नाल सांझ पाईए। विचारां दी आरंभता तो पहला सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब जी कृपा करन अपना रहमत भरिया हथ सिर ते रखण। सतगुरु आप रसना उत्ते वरत के पावन शब्द और गुरबाणी दी विचार साहिब आप करवा लैण और आप सरबत संगत आसीस बख्शो। कोई रसना वांझी ना रहे दोवें हाथ जोड़ अपनियां मन बिरतियां एकागर करदियां लवाओ गुरु चरणा विच हाजरी अदब सहत सरबत संगत मिल करके

0: नाम सत है, नाम सत है वाहे गुरु।
1: पौड़ी बुढ़ी मुड़ा पार तेरे मृतवा रंग प्रंग अनेक ना जपन करतवा। जिया अंदर जियो सब जा ला सच तेरा बस तेरा कृपला। तेरा कर आनंद विदाय तुझ कर मान मुता तेरे।

एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पात से दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक ली ते आए फिरंगद गुर ते अमरदास रामदास सहाय अर्जन हर गोविंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई है जिस गठै सब दुख जाए तेग बहादुर सिमर आय कर नौ निदावे ताए सब थाई होए सहाय दसवा पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दे पाठ दीदार दा ध्यान तरके बोलो जी पंजां प्यारियां चौहों साहिब जादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंट फकिया देख चलाई देख वाई देख के अंडिठ कीता तिन्हां प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी जिन्हां सिंघां सिंघनियां ने धर्म हेत सी दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लहाईयां चरखड़ियां ते चढ़े तनारियां दा उचराए गए गुरद्वारियां दी सेवा ली कुरबानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी के सां सुआसा नाल निवाही तना दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी पंजां तख्तां सरबत गुरु द्वारियां दा ध्यान धरके बोलो जी प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चितावे चेतावन का सदका सर्व सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तरसिया रियाए तां तेग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी सिखां नूं सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान परोसा दान दाना सरदान नाम दान श्री अमृतसर जियां दे दर्शन सुनान चौंकियां झंडे बंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी सिखां दा मन नीवा मत उची मत पत दा राखा वाहिगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा साई दा तार जियो श्री ननकाना साहिब ते हुर गुरुद्वारियां गुरु धामां दे जिन्हां तो खालसा पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दे दाल सेवा संभाल।

पौड़ी बिडूडा पार तेरा मृतवार प्रंग अनेक नाम जपन करतवा जिया अंदर जियो सबके जाला सुख तेरा बस तेरा कृपला तेरे कर अनंत बधाई तुझ कर मान मता ते जप नाप जर सर्व कला भरपूर जिसे जत कथा ना।

ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੇ ਸਭ ਕੋਏ ਕੇਵਲ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗਹਿਰ ਗਮੀਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ ਕੋਏ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕੇਵੜ ਚੀਰਾ ਰਹਾਓ ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲ ਸੁਰਤ ਕਮਾਈ ਸਭ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਕੀਮਤ ਪਾਈ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰਹਾਈ ਕਹਿਣ ਨ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ ਸਭ ਸੱਤ ਸਭ ਤਪ ਸਭ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਸਿੱਧਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਤਦਵੈਣ ਸਦੀਕ ਨੇ ਨਾ ਪਾਈਆ ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਨਾ ਹੀ ਠਾਕ ਰਹਾਈਆ ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਸਿਫਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੇਹੇ ਤਿਸੇ ਕਿਆ ਚਾਰਾ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਵਰ ਨਹਾਰਾ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਓ ਆਖਣ ਔਖਾ ਸੱਚਾ ਨਾਉ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੇ ਭੂਖ ਉਤ ਭੁੱਖੇ ਖਾਏ ਚਲੀ ਹੈ ਦੁੱਖ ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਨਾਏ ਰਹਾਓ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ ਆਖ ਥੱਕੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜੇ ਸਾ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਹੇ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋਗ ਤਿੰਦਾ ਰਹੇ ਨਾ ਚੁੱਕੈ ਭੋਗ ਗੁਣ ਇਹੋ ਹੋਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਏ ਜੇ ਵਡਿਆਪ ਤੇ ਵੱਡ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਜੈਨੋ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਰਾਤ ਖਸਮ ਵਿਸਾਰੀ ਤੇ ਕਮ ਜਾਤ ਨਾਨਕ ਨਾਮੀ ਬਾਏ ਸਨਾਤ ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਕੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਪੁਰਖਾਂ ਬਿਨੋ ਕਰੋ ਗੁਰ ਪਾਸ ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਿਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਣਾਈ ਕਰ ਦਿਆ ਨਾਮ ਪਰਗਾਸ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇਵ ਮੋਕੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪਰਗਾਸ ਗੁਰਮਤ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਨ ਸਖਾਈ ਹਰ ਕੀਰਤ ਹਮਰੀ ਰਹਿ ਰਾਸ ਰਹਾਓ ਹਰ ਜਨ ਕੇ ਵੱਡ ਭਾਗ ਵੜੇਰੇ ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਸ਼ਰਧਾ ਹਰ ਪਿਆਸ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸਹੀ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਗੁਣ ਪਰਗਾਸ ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਰਸ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਭਾਗਹੀਨ ਜਮ ਪਾਸ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵੇ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਸ ਜਨ ਹਰ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤ ਪਾਈ ਤਿੰਨ ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਾਸ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਿਤ ਹਰ ਰਸ ਪਾਇਆ ਮਿਲ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਾਨ ਚਿਤਵਹੀ ਉਦਮ ਜਾ ਆਹਰ ਹਰ ਜੀਓ ਪਰਿਆ ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤੇ ਉਪਾਏ ਤਾਕਾ ਰਿਜ਼ਕ ਆਗੇ ਕਰ ਧਰਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ ਰਹਾਓ ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁਤ ਬੈਂ ਥਾ
कोई ना किसकी तरिया, सिर से रिजक समाहे ठाकुर काहे मन पौ करया। उड़े उड़ आवे सैकोसा तिस पाछी बचरे छरया, तिन कवन खलावे कवन चुगावे मन में ही सिमरन करया। सब निदान दस अष्ट सदान ठाकुर कर तल तरिया, जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत ना परा वरिया। सब निदान दस अष्ट सदान ठाकुर कर तल तरिया, जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत ना परा वरिया। राग आसा महला चौथा, सो पुरख इक ओंकार सतगुर प्रसाद। सो पुरख नरंजन हर पुरख नरंजन, हर गम्मा गम्मा पारा सब ते आवहीं, सब ते आवहीं तुद जी हर सच्चे सिरजनहारा। सब जी तुम्हारे जी, तू जिया का दातारा, हर ते आव हो संतो जी सब दुख विसार नहारा। हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा। तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी, हर एको पुरख समाणा इक दाते इक पेखारी जी। सब तेरे चोज बडाणा, तू आपे दाता आपे भुगता जी। हां तुद बिन अवर ना जाना, तू पार बरंबे अंत बेअंत जी। तेरे क्या गुण आख वखाणा, जो सेव है जो सेव है तुद जी। जन नानक तिन कुरबाणा, हर ते आवहीं हर ते आवहीं तुद जी। से जन जुग में सुखवासी, से मुक्त पाए जैनो हर ते आया जी। तिन टूटी जम की फांसी, जिन निरपौ जिन हर निरपौ ते आया जी। तिन का पौ सब गवासी, जिन से बया जिन से बया मेरा हर जी। ते हर हर रूप समासी, से तन जिन हर त्याया जी। जन नानक तिन बल जासी, तेरी भगत पंडार जी। परे बेअंत बेअंता, तेरे भगत सलाहण तुद जी। हर निक अनेक अनंता, तेरी अनेक करें हर पूजा जी। तब तापहीं जपहीं बेअंता, तेरे अनेक पढ़ें बहुसिमरत शास्त्र जी। कर किरिया खटकर्म करंता, से भगत भले जन नानक जी। जो पावें मेरे हर भगवंता, तू आदि पुरख अपरंपर करता जी। तुद जे बड़े अवर ना कोई, तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी। तू नहीं चल करता सोई, तुदे आपे भावे सोई वरत जी। तू आपे करें सो होई, तुदे आपे सृष्ट सब उपाई जी। तुदे आपे सिरज सब गोई, जन नानक गुण गावे करते के जी।
जो सबसे का जानोई आसा महल्ला चौथा तू करता सचियार मेंडा साई जो तो पावे सोई थीसी जो तू दहे सोई हो पाई रहाओ सब तेरी तू सबनी ते आया जिसनों कृपा करें तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मन मुगवाया तुदे आप बिछोड़या आप मिलाया तू दरिया हो सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे जी जंत सब तेरा खेल विजोग मिल बिछुड़या संयोगी में जिसनों तू जाना है सोई जन जाने हर गुण सद ही आख बखाने जिन हर सेवया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिंदु जा अवर ना कोए तू कर कर विखे हैं जाने हैं सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए आसा महला पहला तित सरवरड़े पहले निवासा पानी पावक तिन है किया पंकजों मोह पग नहीं चले हम देखा तहें डूबियले मान एक न चेतस मूड़ मना हर विसर तेरे गुण गलिया रहो ना हो जती सती नहीं पड़या मूरख मुगदा जन्म पया प्रणव तनानक तिन की शरना जैनों तू ना ही विसरिया आसा महला पंजवा भई प्राप्त मानुख दे हुरिया गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया अवर काज तेरे किते ना काम मिल साध संगत भाज केवल नाम संजाम लाख पव जल तरन कै जन्म वृथा जात रंग माया कह रहाओ जप तप संजम धर्म ना कमाया सेवा साध ना जन्या हर राया कहो नानक हम नीच करम्मा शरण परे की रख हो शर्मा जप तप संजम धर्म ना कमाया सेवा साध न जन्या हर राया कहो नानक हम नीच करम्मा शरण परे की रख हो शर्मा इक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चाओ पाई हमरी करो हद रक्षा पूर्ण होए चित्त की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सब तुम काब हो आभाद महे बचाब हो सुखी बसे मोरो परवारा सेवक सिख सबे करतारा मोर अच्छा निज कर दे करिए सब रिनको आय संगरिए पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रहे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर ना ते आऊं जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं सेवक सिखा मार तारिए चुन चुन शतर हमारे मारिए
आभद मुझे उबरीय मरण काल का त्रास निवरीय हो जो सदा हमारे पच्छा श्रीअस्तु जो करियो रक्षा राख ले ओ मुहे रखण हारे साहेब संत सहाय प्यारे दीन बन दुष्टन के हंता तुम पुरी चतर दस्कंता काल पाए ब्रह्मा बपथरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर बिसन प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जमन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा जू थियो जमन काल सलोक सवारा नमस्कार है तहें हमारा जमन काल सब जगत बनायो देव दैंत जक्षण उपजायो आदि अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी शिव कन को शिव गुण सुख दियो शत्रण को पलमो बद कियो कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछाणत चिंटी ते कुंचर असथूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछन्ने घट घट के बड़ बड़ की जाने जावद करक करा कर तारा प्रजा तरत ताव देह अपारा जावे आ करक कर तोह कब हूँ तुम मैं मिलत देह थर सब हूँ चेते बदन सृष्ट सब तारे आप आपनी बोझ उचारे तुम सब ही ते रहित नरलम जानत भेद भेद अर अलम रंकार निर्विकार निर्लंब आदि अनिल अनादि असंभ ताका मूड़ उचारत पिता जाको पीव न पावत बिदा ताको कृपा हुण अनुमानत महामूढ़ कछ भेद न जानत महादेव को कहत सदा शिव रंकार का चीनत न विव आप अपनी बुद है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तो है तेती तुमरा लखा न जाए पसारा केह विद सजा प्रथम संसारा एक रूपे अनुपस रूपा रंक पायो राव कहीं पूपा अंड जे रसे तज कीनी उत्पज खान बहर रच दीनी कहो फूल राजा हवे बैठा कहो सिमट भयो शंकर अकैठा सगरी सृष्ट दिखाए अचंप आजुग स्वरूप स्वयंप अब रक्षा मेरी तुम करो सिखियो बारे असिख संघरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेच्छ करो रण गाता जे अस्तु तब शरणी परे तिनके दुष्ट दुख तो हवाए मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सवटारे जो कल को एक बार ते है
ताके काल निकट नह है, रक्षा हुए ताहि सब कल्ला, दुष्ट अरिष्ट टरें तत्कल्ला।

त्रागरतन परवार परिया शब्द गावण आइया शब्दो तंगावो हरि केरा मान जिनी वसाया कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब मिसारना अंगीकार ओह करे तेरा कारज सब सवारना सबना गल्ला समृत स्वामी सो क्यों मनो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नाही घर तेरा घर दा तेरा सब किच है जिस दे सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसा बए नाम जिनके मन वसया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरे साचा नाम मेरा आधारो सच नाम आधार मेरा जैनों भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसया जैनों इच्छा सब पुजाइया सदा कुरबान कीता गुरु बिटह जिस दिया एहे वडियाइया कह नानक सुन हो संत हो शब्द धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द।

0: आपको सतनाम श्री
1: की क्या फुरना आ जाते, हाथ जोड़ो फुरने च एक घंटा ना कढ़ो, मेरा तरला है, अपने आप बदलो चेंज कर लो, कोई गल नहीं, बंद अद्धा घंटा 20 मिनट चेंज भी कर लो, हाथ जोड़ो गुरु साहब अगे, गरीब नवाज उन्हें मन जोड़ो, बैठा भी हाँ इनान भी किया तेरा पोत्या, तुसी मैनु कहा से अमृत वेले उठ के नाम जपना, मैं तुहाडा वचन मन्या सतगुरु जी, तो मेरे अंदर तो रौला उ पिया है, जपद्या जपद्या भी पिया है, मूँह तो वाहगुरु कहने अंदर गल्लां होण डईआं, तू मेरे सिर ते हाथ रख, समर्थ गुरु सिर, तुसी समर्थ गुरु जी मेरे सिर ते हाथ रखो, इत्थे हाथ रखण दी जरूरत आ, सारे फुरने बंद।

अकत सतनाम श्री 10 दिन कथा करके चले, कितने गल करन दा हंकार ना हो जाए, मेरा गुरु मैनू बख्श दे। तुसी प्रधान साहब नू पुछ लियो, निक्की दवानी नहीं, निक्की दवानी नहीं जान लगे लैनी, जिहड़ी उहनां लोही देनी है, इत्थे मेरा कोई भरा मिल पिया उहदे गल च पा देनी। जो तुहाडी खुशी आ, जो तुसी मैनू असीस दोगे, उहदा भी कोई मुल है? असीस दा कोई मुल है? संगत मां है, पुता झोलियां भरतियां। किन्ने सालों तो प्रधान साहब दे कोल मैं आउणा, सरदार प्रपाल सिंह कोल, कदी इधर नूं मैं वेखदा ना तो मैं कहा मैं प्रधान सारी दुनिया ते फिर के वेखे, प्रधान सारा पैसा जेब च पा के गां जांदे, इधरले पासे ध्यान मारिया हुण किन्नी क पार्क सी पहलों, बोलो जी, बोलदे क्यों नहीं, उच्ची बोलो, पहलों पार्किंग किन्नी सी, कितों तक पहुँच गई? सतगुरु की कृपा दे नाल उसदे सिर ते हथ रख के सतगुरु ने उस सारे घर वाले नूं तरला पा के हुक्म दे के जितना उठाया उठा के हुण भावें 1000 गड्डी लग जाए, 2000 गड्डियां लग जाण, मेरे साहब ने कृपा की, दया की, उच्चा सुचा जीवन बख्शे हर इंसान नू मेरा सतगुरु, सो ऐसा हर की फिर सर्ब सुख पावे, पावे पावे नहीं पावे ता सर्ब सुख पावे, मेरे मन नू समझाओ, दवानी चवानी ना लो, रब दा नाम जपो, सारी दुनिया दे सुख मिलणगे। अगे पाशा कहिंदे जप मन सदा सदा सदा

आखो सतनाम श्री जप मन उची बोलो किन्ना क चिर सदा सतनाम उठत बैठत सोवत ध्याइए उठत सोवत मार्ग चलत रात तुरे तुरे जाते भी वाहिगुरु वाहिगुरु वेख्यो तकदीर कौम दियां बदलतियां

आखो सतनाम श्री अब कलु और इतरा अब थोड़ी जी पीड़ा होंदी होगी इस गल दी इतरा कराउण दी नहीं तुहानू कुछ मिलूगा इतना कहत्या सीधे होके बैठिया मेरे गुरु की खुशी मिलूगी तुहानू तुसी किसे जज कोल जाके इतरा बह सकते हो सा सुका रहिंदा जिन्ना चिर जज दे कोल बैठे रहिंदा इतने ही इत्थे होना चाहिदा आखो वाहिगुरु अब कलु आयो रे अब कलु आयो रे महाराज डरा रहे हो जिहड़ा सानू कह रहे भी कल युग आ गया जे कल युग आ गया जे कहिंदे डरन दी कोई जरूरत नहीं एक नाम बो बो बो बो एक बो बो का मतलब बीजो बीजो बीजो एक

तगड़े हो गए। आख्या वर्त रख लिए, श्राद्ध कर लिए, यात्रा कर आइए, जे रब का नाम जपिए तो प्रवान हो गए। रब का नाम जपिए ना, वर्त श्राद्ध गुगे नामिया ये सब कुछ कर लिए तो पास हो जाएंगे। केंद्र ना अन रुत नाही, बोलो हाँ अन मैं कलयुग के विच ते कोई होर रुत ही नहीं जिद कुछ उग खलोगा। आखो वाहगुरु, ये तो कलयुग रोती नाम बीजन दी है। अन रुत नाही मत परम भूलो भूलो मत। दुनिया के लोगो मता कितने परम भुल के मस्या ना ना के पास हो जाओगे ना, वर्त रख के पास हो जाओगे ना ना, मत परम भूलो भूलो, एको ही गल आ वाहिगुरु वाह।

0: पार हो जाएंगे
1: ना, बिल्कुल नहीं। मत भरम भूलो भूलो, अन रुत नाही नाही, होर कोई रुत नहीं गी, केवल रुत नाम जपण दी है। आखो वाहिगुरु, जप मन सतनाम सदा सतनाम, हलत पलत मुख उज्जल हुई है, नित त्याई है हर पुरख, जय हर सिमरन पया। अधियां व्याधियां पदियां तीन ताप ने, नाम जपोगे तिने उतर जाएंगे, जाल ना सके तीने ताप। महाराज पातशाह कहिंदे जिहड़े नाम जपणगे उन्हां नूं तिने ताप साड़ नहीं सकणगे। आदियां व्याधियां पादियां तो रहत हो जोगे, जय हर सिमरन पया, इन्हां तो गत हो गई, पला हो गया। जय हर सिमरन पया, अपाद गत कीनी, वड भागी हर जपना। आ जिन्ने बैठे हो, मेरे प्यो ने डायरी ते लिखता है सारे वड्डे भागा वाले, हौली बोले हो, चाहते नहीं तो डायरी च ना लिखे सारे ही वड्डे भागा वाले ने।

दिल हो मोहब्बत जिन सही सचिया, जिन मन होर मुख होर से कांडे कचिया। रते इश्क खुदाए रंग दार के, विसरिया जिन नाम ते पारथिए। सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाह दे शाहो, जिस पास बैठिया सोही है सबना दा विसाह।

0: एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। आसा महला पहला वार श्लोका ना श्लोक पी महले पहले के लिखे टुंडे असरा जी की तुनी श्लोक महला पहला। बलिहारी गुरु अपने देवहारी सदवार जिन मानस ते देवते किए करतना लागी वार महला दूजा।
1: जेसो चंद गुरसुर चढ़े हजार एते चरण हुंदियां दुर्गन को कंधा। महला पहला नानक गुरु न चित नि मन अपने सुचेत

सादिक सिद्ध सो जन जिया को आधार, तूता जनक राजा अवतार, शब्द संसार सार, रहे जगतर जल पद्म विचार, कलिपतर रोग विदार, संसार ताप निवार, आत्मा त्रिविध तेरे

0: पहला पड़ पड़ गड़ी लदी है पड़ पड़ परियसा पड़ पड़ बेड़ी पाई है पड़ पड़ गड़ी है खा पड़ी है जेते बरस बरस पड़ी जेते मां पड़ी जेते अर्जा पड़ी जेते सास नानक लेखे एक गल और हम मैं चकना चाख महला पहला
1: लिख लिख पढ़िया तकड़े वो तीर्थ

कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहा कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ पहननहा कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूपया पार कूड़ मिया कूड़ भी खप होए खार कूड़ कूड़ ने हो लगा बिसरया करता।

0: तुदवाच कूड़ो कूड़ महला पहला।
1: सचता प्रजनिये जर्द सचा होए की मनुदतन करे छतोए।